0: यो BFBS कुलकर रेडियो हो।
1: साइली माइली आउनु है हामीसँग एकछिन बात मारौ।
2: हामी त आउँदैनौ, अबे लौ जा घर जाना।